0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಕೇವಲ ಕತ್ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಆ ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಬದುಕುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮುಗ್ಧ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಬೆಳಕಿನ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಬಹುದು ಅಲ್ವಾ?
3: ನಾವು ಹೋದ ಮೇಲೂ ಈ ಸುಂದರ ಜಗತ್ತನ್ನ ನೋಡುವ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವೇ ನೇತ್ರದಾನ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೇತ್ರದಾನ